रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे, किनारे पे आ

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सूर्य।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल की।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चैनल।

अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चनार और लो हाजिर है और रिज्यूस लेकर शो व्हाट्सएप।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो व्हाट्सअप। मैं हूं आपका साथी जॉक ज़ूस। फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चैनल को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। साथ ही साथ डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। मजीद जानकारी के लिए प्लीज लॉग ऑन टू www.radiochannel.com।

0: Asia Zeus. Kom nou ja.
1: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
2: Hot is frequency. Har dil ki dhadkan. Radio Chennai 90.4 FM. Our brother. Aaj ka weather.
1: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
2: जी हाँ, बता रहे हैं हम आपको मौसम का हाल क्या होगा, एकदम फुस या होगा बवाल। आज का वेदर अपडेट रेडियो चना 90.4 एफएम, मैं हूँ जॉक्सी, आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप
1: रेडियो चना, रेडियो रेडियो चना वेदर अपडेट।
2: जी हाँ, बादल क्यों गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है आज आपको, क्योंकि अभी जो थोड़ा बहुत सूरज की कहीं कहीं इंटेंसिटी दिख रही है, धूप दिख रही है, वो भी छुप जाने वाली है। इट्स मोस्टली क्लाउडी फॉर टुडे। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस। वही अभी की बात करें तो जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, सूरज बादलों के पीछे दबकर गरज बरस की भी संभावना है। यू इंडेक्स वेरी वीक पर, ह्यूमिडिटी 75%, विंड स्पीड है 2 किलोमीटर, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 6:35 पर, आज का सनसेट होगा 6:02 पर।
1: रेडियो चेन्नई।
2: जी हाँ, कुदरत आज आपको पानी वाला डांस करा सकती है। यूजुअल से ठंड जो है बहुत ज्यादा है। अगर आप घर से बाहर जाने वाले हैं, जा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि एक्स्ट्रा लेयर साथ लेकर चले। ना जी ना, बदन को भीगने नहीं देना, रेन कवर्स वगैरह या एक अम्ब्रेला रखें अपने साथ, ताकि अगर मौसम बिगड़ भी जाता है आपकी सेहत ना बिगड़े। मैं हूँ जॉक्स, हमारी टीम रेडियो चनार एंड वी के।

0: Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी व्हाट्सएप शो. मैं हूं जॉक सर. वायरल ऑन व्हाट्सएप. वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा शो जहां पर जो वायरल होता है हम पहुंचाते हैं आप तक.
3: व्हाट्सएप
2: क्योंकि कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जाने वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा. यह एक चाइनीज रोबोट जो एआई की मदद से चलता है सरपास कर चुका है जेन बोल्स की टॉप स्पीड रीचिंग इट 45.5 किलोमीटर पर आवर.
3: व्हाट्सएप
2: इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है सुपरमैन विच इज सेज इट कैन रीच टू टॉप स्पीड ऑफ 12.66 मीटर्स पर सेकेंड. और ये जो है हुसैन बोल्ट को पीछे छोड़ चुका है. अब भैया एआई से लेस ये रोबोट चाइनीज है चलेगा या फिर जाएगा देखेंगे हम भी आप भी. फिलहाल के लिए व्हाट्सएप था तो वायरल था तो व्हाट्सएप पर आ चुका है. मैं हूँ जॉक्सू श्रेहक.

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, समटाइम्स द पर्सन यू लव द मोस्ट बिकम्स द रीजन फॉर योर डीपेस्ट पेन। और इस फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन सिरे हर्ट

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: Asia Zeus. Going out.
1: Zeus.
2: Radio Chennai 91.4 FM. Enjoy कर रहे हैं आप मजदार शो. What's up? What's up? जो के सफर में मैं हूँ आपका हम सफर जॉक ज्यूस और वक्त हो चला है कि आज का टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाए. लेकिन दोस्तों टॉपिक बताने से पहले बता दूं आपको, याद दिला दूं आपको कि 8899 0049 0049 नंबर 8899 0049 0049 नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. रेडियो 90.4 एफएम पर आइए आज का टॉपिक आपको बताते हैं. लेकिन उससे पहले कुछ मैसेज जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं. जी हाँ, संडे को मैसेज की है शादाब वानी ने. लिखते हैं, सर इफ एनीबडी इज लिसनिंग टू मी प्लीज लेट मी हैव एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ रेडियो चिनार फैमिली. आई एम शादाब, आई एम 20 इयर्स ओल्ड एंड आई हैव बीन following styles of music on Radio Chennai 90.4 FM. I know you have a mass crowd, but my love for Radio Chennai is unique and different, and from my family and my well-wishers, I wish you all a great success. Thank you so much, Shadab, for connecting to Radio Chennai, and I hope in future you'll be staying connected and close to the beat of every heart. Radio Chennai.
1: Yes.
2: So friends, 8899 0049 0049 ish number is varshi dimantu nendelan sane nendelan se aap jud sakte hain, call kar sakte hain, whatsapp ya kar sakte hain text message. WhatsApp show mein aaj hum baat karne wale hain single screen ki. Single screen cinema halls jo ki India ko represent karte hain, aur wahi agar hum baat kare to kahin na kahin kadi takkar aur kada muqabla de rahe hain air condition multiplexes aur OTT streams ko. Yahan kya hai single screen nostalgia, aaj hum baat karenge single screen ki. Radio Chennai 90.4 FM par hame bas aapka pyar chahiye, to mere yaar dete raho pyar aur har dil ki dhadkan ko dhadkate raho. मैं हूँ जॉक ज़ूस, एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो. व्हाट्स अप, स्टे हुक्ड, स्टे क्लोज टू द हार्ट.

आरजे बीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: ए कुत्ते, इडियट, हाँ तेरी तो

0: 94.4 FM enjoy कर रहे हैं आप मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो के सफर में मैं हूं आपके साथ ही जॉक ज्यूस।
1: आरजे ज्यूस ऑन द माइक।
0: शो का हिस्सा बनने के लिए 8899904904 इज द नंबर 8899904904। आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मिलूंगा डीएम करने के लिए जॉक ज्यूस के नाम से सर्च करें JOCKEUS। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार से हुक धड़काते रहो।

0: Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Tech Talks.
3: Tech Talks
2: with RJ
3: Zeus. This is the Radio Shark Heart's Frequency, but main hoon Jack Zeus. So, what's up show or what's up show ka segment Tech Talks.
4: Tech Talks.
3: जी हाँ, मालिक मेहरबान तो गधा पहलवान, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है जो ऑनलाइन बात कर रहा हूँ मैं टाटा सियरा की. जी हाँ, फ्री एडवर्टीजमेंट मिल रही है टाटा को. इट हैपेंड व्हेन एक्चुअली अ कंटेनर गॉट इन्वॉल्व्ड व्हेन इट वाज गेटिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रक. गिर गया, गाड़ी चल रही थी, ट्रॉलर चल रहा था और कंटेनर गिरा, तो जा गिरा टाटा सियरा पर. अब ऑनलाइन डिबेट इसलिए है क्योंकि टाटा सियरा को मामूली सी डैमेज हुई है, जबकि कंटेनर इज ह्यूज. और उसके बाद जब ये ट्रक से गिरा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी फोर्स और स्पीड के साथ टाटा सियरा पर जा बजा, और उसके बावजूद भी डेंट्स आउटसाइड हुए, इंटरनल इवन कांच भी नहीं टूटा है गाड़ी का. Now that's what got Tata Sierra attention, because people are praising the build of Tata. Well, ye container kaise baja, kitna zor se aaya, what was the speed actually, that is unaware and unclear for the people. But somehow, maine kaha na, malik meherban to gada pehlwan. रेडियो चुनाव की हॉट इस फ्रीक्वेंसी पर बातचीत जारी है. आपकी हमारी यारी है श्री हट, हाय हाय, 12 तक पूरी तैयारी है, दरगाते रहो जी.

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा

0: काका असली तो है ना,
1: कितनी सुंदर।
2: सुन पुष्पा, तेरे भाई की बेटी ने सोने की चेन ली है, कह रही है पैसे मेरे पुष्पा चाचा देंगे।
3: तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
4: समझ गया भाव, पैसे देके आता हूँ।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

दोस्तों रेडियो चला 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप शो का सेगमेंट बॉलीवुड न्यूज। सलमान भाई आओ के आ गए हैं यूट्यूब पर। लेकिन जब सलमान खान यूट्यूब पर आए, न्यूज आई कि सलमान खान ने यूट्यूब का पेज बनाया है और फैन से कनेक्ट करने वाले, आई थॉट कि भैया नया रिकॉर्ड तो बना ही बना। लेकिन ये क्या हो गया? जी हाँ, मिल गया सलमान खान को जवाब। 20,000 फॉलोवर्स के साथ अपना चैनल जो स्टार्ट किया, अब भी 26,000 के आसपास है। एंड इट हैज बीन डेज जहां पर हम देखते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज जैसे ही यूट्यूब पर आते हैं, यूट्यूब फैंस उनका वेलकम करते हैं, मतलब रातों के रात तो रिकॉर्ड बन जाते हैं। लेकिन सलमान खान का रिकॉर्ड क्या, ये तो 50 के भी पार नहीं कर पाए। क्या लोग ठुकरा रहे हैं सलमान खान को? क्या लोगों को हो चुकी है तसल्ली कि सलमान खान अब उतने, मतलब बहुत बार ये न्यूज़ भी देखने को मिली वगैरह कि सलमान खान बुड्ढे हो गए, अपनी रिटायरमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन सलमान बॉय रिटायरमेंट छोड़ो, सिक्स पैक के साथ सामने आ रहे हैं। अब ये सब्सक्राइबर का खेल कहाँ तक पहुँचेगा? अब क्या सलमान खान भी दिखेंगे हमें लोगों से अपील करते हुए कि भैया सब्सक्राइब कर दो, वीडियो के बाद शेयर का बटन दबाओ? क्या हो चुका है बॉलीवुड को? वैसे कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम और रील्स वाले खा चुके हैं सिल्वर स्क्रीन को। अब अगला पड़ाव क्या होगा? आऊं क्या या जाऊं क्या होगा? फिलहाल वो तो हम भी देखेंगे। आप यहाँ पर सलमान खान पर फिल्म आए हुए कुछ ट्रैक्स आपके लिए। This one is my personal favorite and it is from movie Kahin Pyar Na Ho Jaye. It's Salman Khan and Raveena Tandon. Jee haan, Radio Chinar ki hottest frequency par meri life bana de. Nahi, matlab jazbaati nahi hote. Track ka title hai, meri life bana de. It will be followed by other tracks. Stay hooked. Hai hai, meri jaan, dhadkate raho.

नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी, समीर चाह रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।

0: कौन आया
1: दोस्तों? रेडियो चुनार पर हो चुकी है टिक टिक घड़ी की और आ चुका है इशारा कि मेरे यारा लेनी पड़ेगी आज के लिए इजाजत। लेकिन इजाजत नाचते झूमते गाते और वादा निभाते वादा इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने का आप आइए इंस्टाग्राम पर सर्च करें जॉक्स्यूस JOCKSEUS
2: के बारे में सोच रही थी।
1: यह इंस्टाग्राम पर फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें और मोहब्बत भरा डीएम भी आप भेज सकते हैं। जाते जाते ये नूरानी नगीना तम्मा तम्मा रिमिक्स इट्स रेट्रो फ्यूजन स्टूडियो। So my dear, till we meet again, keep your heads high, walk tall, and always remember that, Habibi, I love you all. I'll see you again tomorrow. Bye-bye, Tata, take care. Ma salama.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

on, but hangama hona chahiye. Hangama shuru ho chuka hai, jahan hota hai bharpoor drama, entertainment aur life ka kya philosophical touch hai wo bhi yahan milta hai. Uske ilawa life mein kya chal raha hai, hamari nahi baakiyon ki life mein kya chal raha hai, internet pe kya chal raha hai, kya buzzing hai, sabke bare mein hoti hai baat. Jitne tum pyar se jiloge utni hi zindagi ramba. शो शुरू हो चुका है और आज थोड़ा जल्दी ही शो शुरू हो रहा है क्योंकि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं मौके पे चौका मारने आ जाती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि जो टाइम आपके साथ मिले, अगर एक्स्ट्रा भी मिल रहा है तो इट्स ऑलवेज फन. एंड आते आते हमारी एक परंपरा है कि आते आते ही प्ले होता है कुछ खास कुछ क्रेजी.

मैं वज्रा सुन रही है सुना 90.4 एफएम में आते आते ही कुछ क्रेजी प्ले हुआ है और आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं 8899049904 इज द नंबर यू कैन कॉल मैसेज टेक्स्ट व्हाट्सएप फॉर द प्रमोशन रोन्स ऑफ पंजाब सुन रही है 90.4 एफएम मैं बस यूं कह रही हूं वापस आए

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दे।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: लेकिन अब सब बोलेंगे,
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे,
0: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
1: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
0: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे,
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM पर।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: тренер.
1: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
2: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Tunar 90.4 FM. 4 FM.

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज

को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर एवरी वेंसडे एंड सैटरडे. रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार 90.4।

रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दौड़ कुछ नहीं कहते, मगर मगर

दिन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात लेकिन एक बात।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प म रे म।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: फोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: अरे नैना ओ मीठे बहना, अरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे।

मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।